आदाब। NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरों के साथ वसीमा आबिद और खलील शिराजी हाजिर हैं। पेश खिदमत है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 16 सितंबर रात 9 बजे और भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे की खबरें। जापान की एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स ASTF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हाक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है, क्योंकि तोत्तोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा उसी तैयारे का हो। ASTF का तैयारे से राबता उस वक्त मुनकता हो गया जब ये मंगल की दोपहर 1 बजे के करीब प्रीफेक्चर के शुमाल में 50 किलोमीटर दूर बैन अलाक्वामी पानियों के ऊपर परवाज कर रहा था। उनका कहना था कि तैयारा उस वक्त रेडार से गायब हो गया। यह तैयारा शुमाली जापान के आओमोरी प्रीफेक्चर में मिसावा एयरबेस पर तैनात था। ASTF ने कहा कि ग्लोबल हॉक ने सुबह तकरीबन 10:20 पर इस अड्डे से उड़ान भरी थी। उनका कहना था कि यह तरबियती मिशन पर नहीं था, परवाज का मकसद जाहिर नहीं किया गया है। ग्लोबल हॉक तकरीबन 15 मीटर लंबा और 5 मीटर ऊंचा, जबकि इसके परों का फैलाव 40 मीटर है। ये तकरीबन 36 घंटे तक मुसलसल परवाज कर सकता है और हाई रेजोल्यूशन इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल करते हुए तकरीबन 20,000 मीटर की बुलंदी से निगरानी के मिशन को अंजाम दे सकता है। जापान की वजीर आजम ताकाइची सनाए ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। टोक्यो में पार्टी के हेडक्वार्टर में बुध की सुबह 10 बजे शुरू होने वाले जनरल काउंसिल के एक गैर मामूली इजलास में नई क्यादत के ओहदों की बाजाबता मंजूरी दी गई। नायब सदर आसोतारो, सेक्रेटरी जनरल सुजुकी शुन इची, पॉलिसी रिसर्च काउंसिल के चेयरपर्सन कोबायाशी ताकायुकी और इंतखाबी हिकमत अमली कमेटी के चेयरपर्सन निशिमुरा यासुतोशी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। पार्लिमानी उमूर के चेयरपर्सन के तौर पर खिदमत सरंजाम देने वाले काजियामा हिरोशी को जनरल काउंसिल का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया। साबिक डेप्यूटी चीफ काबीना सेक्रेटरी मुराई हिदेकी को पार्लिमानी उमूर कमेटी का चेयरपर्सन मुकर्रर किया गया है। एग्जीक्यूटिव कायमकाम सेक्रेटरी जनरल हागियोदा कोइची, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन और मुहिम के हेडक्वार्टर के चेयरपर्सन मात्सुनो हिरोकाजू और शोबे ताल्लुकात आम्मा के चेयरपर्सन सुजुकी ताकाको भी अपने ओहदों पर बरकरार रहे। ताकाची ने कहा कि वो एक ऐसा फ्रेमवर्क कायम करना चाहती हैं जिसमें पार्टी और हुकूमत दोनों की ताकत से भरपूर अंदाज में इस्तेफादा करते हुए वो उन कलीदी पॉलिसी तब्दीलियों को अमली जामा पहना सकें जिनका उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में वादा किया था। जापानी हुकूमत के तर्जुमान आला ने गैर जानबदार कानून साजों के एक ग्रुप को बताया है कि हुकूमत बैन अलाक्वामी फौजदारी अदालत ICC की हिमायत करती है। ICC की सरबराह और दीगर हुकाम पर अमरीका की जानिब से पाबंदियां लगाई गई हैं। किहारा मिनोरू ने यह तबसरा मंगल को पार्लियामेंट में गैर जानबदार पार्लिमानी एसोसिएशन बराए नजरसानी इंसानी हकूक सिफारतकारी के अराकीन से मुलाकात में किया। ये कानून साज हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो दरख्वास्त करे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ICC की जापानी सरबराह अकाने तोमोको पर से पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म करे। ग्रुप ने मंगल को दरख्वास्तों पर मुश्तमिल एक मुरासला किहारा के हवाले किया। मुरासले में कहा गया है कि वो अमरीकी पाबंदियों की सख्त तरीन अल्फाज में मजम्मत करते हैं। इसमें जापानी हुकूमत पर जोर दिया गया है कि वो पाबंदियों के खिलाफ वाज़ह एहतजाज रिकॉर्ड कराए और इनकी फौरी वापसी का मुतालबा करे। ग्रुप ने वजीर आजम ताकाइची सनाए से भी मुतालबा किया कि वो रवां माह अक्वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अपनी तकरीर में ICC के लिए जापान की हिमायत का इजहार करें। किहारा ने जवाब में कहा कि हुकूमत ICC की मुस्तकिल हिमायत करती है, क्योंकि ये अदालत कानून की हुक्मरानी को यकीनी बनाती है।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। अब मजीद खबरें समाप्त फरमाइए। नेपाल और चीन की सरहद पर शदीद सैलाब आने के तकरीबन 3 हफ्ते बाद इस इलाके में काम करने वाली बैन अल्कवामी गैर सरकारी तंजीमों या एनजीओस के नुमाइंदों ने मुतासर आबादियों के लिए तवील मुद्दती मदद का मुतालबा किया है। नुकसानात की वसत का जायजा लेने और मकामी जरूरियात के सर्वे में मसरूफ अमल एक जापानी ग्रुप ने पीर के रोज ऑनलाइन ब्रीफिंग मुनाकिद की। जापान प्लेटफॉर्म के हिगुची हीरो आकी ने दिखाया कि आफत में पुल बह जाने के बाद किस तरह रस्सी और दीगर जराए से इमदादी सामान की तरसील की जा रही है। उन्होंने कहा, सबसे बड़ी चीज ये है कि सड़कें कट चुकी हैं जिससे इमदाद पहुंचाना मुश्किल हो गया है। इसके बाद इमदादी सरगर्मियों के लिए सड़कों तक रसाई की बहाली बुनियादी शर्त बन चुकी है। एक और जापानी एनजीओ के एहलकार ने मुस्तकबिल के लाहे अमल के बारे में ऐसे लोगों से अपनी बातचीत बयान की जिन्होंने अपने अहले खाना को खो दिया है। शांति रजाकार एसोसिएशन की मोहतरमा हागीहारा हिरोको ने कहा, जब तक लोग ये तसव्वुर नहीं कर सकेंगे कि उनका मुस्तकबिल कैसा होगा, उनके लिए आगे बढ़ना मुश्किल है। इस लिहाज से जरिए माश की बहाली जरूरी होगी। जापानी हुकूमत ने पहली बार बैरून मुल्क मुकीम जिनमें जापानी शहरी भी शामिल हैं की मलकियत में मौजूद जमीनों और इमारतों के आदादोशुमार जारी किए हैं। मंगल को जारी किए गए सर्वे के नतायज जाहिर करते हैं कि मुल्क में रजिस्टर्ड अराजी का तकरीबन 0.06% बैरून मुल्क मुकीम अफराद और कारपोरेशनों की मलकियत है। 27.2% के साथ जमीन की मलकियत में सबसे ज्यादा हिस्सा अमरीका का है। इसके बाद चीन का 22.5% और ताइवान का 7.7% है। सर्वे यह भी जाहिर करता है कि जापान में रजिस्टर्ड इमारतों में से तकरीबन 0.2% बैरून मुल्क मुकीम रहायशियों और कंपनियों की मलकियत है। चीन इमारतों की मलकियत में 44.2% के साथ सरफहरिस्त है। इसके बाद 18.6% के साथ ताइवान और 11.3% के साथ अमरीका का नंबर आता है। जापानी हुकूमत ने ऐसी जमीन और इमारत मालिकान की शनाख्त के लिए रजिस्ट्रेशन की मालूमात को भी देखा जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो गैर मुल्की शहरी और कंपनियां हैं। नतायज से पता चलता है कि रजिस्टर्ड अराजी का 0.46% और रजिस्टर्ड इमारतों का 1.07% उनकी मलकियत है। हुकूमत इन नतायज को गैर मुल्की शहरियों से मुतल्लिक मुस्तकबिल की पॉलिसियां बनाने के लिए बतौर हवाला इस्तेमाल करने का इरादा रखती है।
1: और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की एयर सेल डिफेंस फोर्स ASDF का कहना है कि एक बगैर पायलट जासूस तैयारा ग्लोबल हॉक मुमकिन तौर पर गिरकर तबाह हो गया है क्योंकि तोतोरी प्रीफेक्चर में साहिल के करीब समंदर में तैरता हुआ मलबा मिला है। हो सकता है कि मलबा इसी तैयारे का हो। और जापान की वजीर आजम ताकायची सनाई ने जुमेरात को काबीना में रद्दोबदल से पहले बुध की सुबह लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की नई इंतजामी टीम का ऐलान किया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तज्जियों के लिए आप जब चाहें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11,655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकाइची सानाए ने अपने कुछ प्रमुख मंत्रियों को उनके पदों पर बरकरार रखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने बृहस्पतिवार दोपहर को नए कैबिनेट सदस्यों के बारे में बताया। ताकाइची मंत्रिमंडल के 18 सदस्यों में से किहारा सहित 8 अपने पदों पर बने रहेंगे। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी, विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो भी अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। ताकाइची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सहयोगी पार्टी के एक सदस्य को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। जापान इनोवेशन पार्टी के पूर्व महासचिव नाकात्सुका हिरोशी को नियामक सुधार व संबंधित नीतियों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान और अमेरिका से तर्कसंगत और संयमित रहने का आग्रह करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने का आह्वान किया है। बुधवार को पेइचिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बैठक में उन्होंने ये आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने चीन और ईरान के बीच संबंध विकसित करने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन ईरान के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए आपसी संवाद व सहयोग मजबूत करने को तैयार है। पश्चिम एशिया के हालातों के बारे में वांग ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि क्षेत्रीय तनाव यमन और लाल सागर तक फैले। उन्होंने संबंधित पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। इसके जवाब में अरागची ने कहा कि ईरान लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता, बल्कि अपने हितों की डटकर रक्षा करते हुए एक राजनयिक समाधान चाहता है। अरागची के अनुसार ईरान का मानना है कि अमेरिका के साथ हुआ उसका समझौता ज्ञापन अब भी वैध है और अमेरिका को उसमें की गई सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी चाहिए। ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस माह के अंत में अमेरिका में होने वाली बैठक से पहले हुई है। माना जाता है कि इस बैठक से चीन पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मूल ब्याज दर में 0.25% अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बैंक ने 3 साल से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा किया है। नीति निर्धारकों ने आधिकारिक नीतिगत ब्याज दर को 3.75 से 4% के बीच रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2023 में ये दर बढ़ाई थी। फेडरल रिजर्व ने मंगलवार से शुरू हुई अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक के समापन पर इस फैसले की घोषणा की। मतदान करने वाले सभी 12 सदस्य इसके पक्ष में थे। नीति निर्धारकों ने माना कि ईरान के हालातों के कारण तेल कीमतें बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति उच्च है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ब्याज दर बढ़ाने से मुद्रास्फीति को 2% के लक्षित स्तर तक तेजी से वापस लाने में मदद मिलेगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा, हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुद्रास्फीति हमारे लक्ष्य की ओर स्पष्ट और पर्याप्त गति से बढ़ रही है। आज FOMC ने फैसला किया कि ये मानक पूरा नहीं हुआ है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद लाल सागर स्थित एक निर्यात केंद्र पर तेल की लोडिंग रोक दी गई है। सऊदी अरब ने पिछले बृहस्पतिवार को ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस पाइपलाइन का उपयोग होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर यांबू बंदरगाह तक कच्चा तेल भेजने के लिए किया जाता था। रॉयटर्स ने मंगलवार को जहाजरानी उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब ने यांबू में तेल की लोडिंग रोक दी है। पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर रहे हैं। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। हूतियों ने बुधवार को एक वक्तव्य में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यांबू में एक तेल सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों से क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी NPA की एक विशेषज्ञ समिति ने जापान के सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए निर्दिष्ट कौशल और अन्य योग्यताओं वाले विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये क्षेत्र श्रम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा सेवा कानून के तहत स्थायी निवास दर्जे वाले विदेशी, जापानी नागरिकों के जीवन साथी और कुछ अन्य लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सुरक्षा सेवा संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और एक वकील सहित विशेषज्ञों की इस समिति ने बुधवार को टोक्यो में अपनी पहली बैठक की। विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि विदेशी नागरिकों को निर्दिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम एवं कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम के तहत सुरक्षा क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। NPA के सामुदायिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख यामादा योशी ताका ने कहा कि सुरक्षा उद्योग विदेशी श्रमिकों का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वो चाहते हैं कि समिति सदस्य विभिन्न दृष्टिकोणों से ऐसे लोगों को स्वीकार करने पर चर्चा करें। NPA के अनुसार श्रम की कमी के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र को वृद्ध कर्मियों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगभग आधे कर्मचारी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि किन सुरक्षा सेवाओं में अधिक विदेशी श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जो विदेशी श्रमिकों को संबंधित अनुभव और कौशल विकसित करने में मदद करे। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो किकी नी किमाशिता।
3: दो देशिता का?
2: सुबारशी कात्ता देसु।
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。
4: あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो किकी नी किमाशिता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
3: दो देशता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
2: सुबारशिकात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
2: शशी वो तकसन तोरीमाशिता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: मीते कुदासाई।
1: देखिए,
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
4: आ, कोरे, यूकी सा।
1: अरे, ये तो यूकी जी हैं।
0: हारू जी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
3: यूकी सा?
1: यूकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक यूकी की थी जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: पियानो नो एनसो किकी नी किमाशिता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
3: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
3: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ। उसके बाद आया है
3: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
3: इकिमाशिता
1: है क्रिया
3: इक
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
3: किकिनी इकिमाशिता
0: यानी सुनने गई थी में
3: किकिनी
0: बना है क्रिया
3: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
3: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
3: पियानो नो एनसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
3: इकिमाशिता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: किकिनी इकिमाशिता, पियानो नो एनसो किकिनी इकिमाशिता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
5: क्यों दोको नी इकिमाशिता का,
1: आज कहाँ गई थी।
0: इसमें
3: क्यों
0: का अर्थ है आज और
3: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहाँ।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
3: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
3: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
3: काईनी
0: बना है क्रिया
3: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
3: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
3: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
3: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
3: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
3: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।寿司を食べに行きました。
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
3: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
3: कायोबी।
1: बुधवार है
3: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
3: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
3: खीयोबी।
1: शनिवार है
3: दोयोबी।
1: और रविवार है
3: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।

0: जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहां जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहां का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहां आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहां सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
2: 再放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने अपने कुछ प्रमुख मंत्रियों को उनके पदों पर बरकरार रखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने बृहस्पतिवार दोपहर को नए कैबिनेट सदस्यों के बारे में बताया। ताकायची मंत्रिमंडल के 18 सदस्यों में से किहारा सहित 8 अपने पदों पर बने रहेंगे। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी, विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सु और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो भी अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। ताकायची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सहयोगी पार्टी के एक सदस्य को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। जापान इनोवेशन पार्टी के पूर्व महासचिव नाकात्सुका हिरोशी को नियामक सुधार व संबंधित नीतियों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री वांगी ने ईरान और अमेरिका से तर्कसंगत और संयमित रहने का आग्रह करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने का आह्वान किया है। बुधवार को पेइचिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के साथ बैठक में उन्होंने ये आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने चीन और ईरान के बीच संबंध विकसित करने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन ईरान के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए आपसी संवाद व सहयोग मजबूत करने को तैयार है। पश्चिम एशिया के हालातों के बारे में वांग ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि क्षेत्रीय तनाव यमन और लाल सागर तक फैले। उन्होंने संबंधित पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। इसके जवाब में अरागची ने कहा कि ईरान लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता, बल्कि अपने हितों की डटकर रक्षा करते हुए एक राजनयिक समाधान चाहता है। अरागची के अनुसार ईरान का मानना है कि अमेरिका के साथ हुआ उसका समझौता ज्ञापन अब भी वैध है और अमेरिका को उसमें की गई सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी चाहिए। ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस माह के अंत में अमेरिका में होने वाली बैठक से पहले हुई है। माना जाता है कि इस बैठक से चीन पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मूल ब्याज दर में 0.25% अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बैंक ने 3 साल से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा किया है। नीति निर्धारकों ने आधिकारिक नीतिगत ब्याज दर को 3.75 से 4% के बीच रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2023 में ये दर बढ़ाई थी। फेडरल रिजर्व ने मंगलवार से शुरू हुई अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक के समापन पर इस फैसले की घोषणा की। मतदान करने वाले सभी 12 सदस्य इसके पक्ष में थे। नीति निर्धारकों ने माना कि ईरान के हालातों के कारण तेल कीमतें बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति उच्च है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ब्याज दर बढ़ाने से मुद्रास्फीति को 2% के लक्षित स्तर तक तेजी से वापस लाने में मदद मिलेगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉर्श ने कहा, हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुद्रास्फीति हमारे लक्ष्य की ओर स्पष्ट और पर्याप्त गति से बढ़ रही है। आज FOMC ने फैसला किया कि ये मानक पूरा नहीं हुआ है।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद लाल सागर स्थित एक निर्यात केंद्र पर तेल की लोडिंग रोक दी गई है। सऊदी अरब ने पिछले बृहस्पतिवार को ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस पाइपलाइन का उपयोग होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर यांबू बंदरगाह तक कच्चा तेल भेजने के लिए किया जाता था। रॉयटर्स ने मंगलवार को जहाजरानी उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब ने यांबू में तेल की लोडिंग रोक दी है। पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर रहे हैं। हूथी लड़ाकों ने लाल सागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। हूथियों ने बुधवार को एक वक्तव्य में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यांबू में एक तेल सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों से क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी NPA की एक विशेषज्ञ समिति ने जापान के सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए निर्दिष्ट कौशल और अन्य योग्यताओं वाले विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये क्षेत्र श्रम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा सेवा कानून के तहत स्थायी निवास दर्जे वाले विदेशी जापानी नागरिकों के जीवन साथी और कुछ अन्य लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सुरक्षा सेवा संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और एक वकील सहित विशेषज्ञों की इस समिति ने बुधवार को टोक्यो में अपनी पहली बैठक की। विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि विदेशी नागरिकों को निर्दिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम एवं कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम के तहत सुरक्षा क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। NPA के सामुदायिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख यामादा योशीताका ने कहा कि सुरक्षा उद्योग विदेशी श्रमिकों का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वो चाहते हैं कि समिति सदस्य विभिन्न दृष्टिकोणों से ऐसे लोगों को स्वीकार करने पर चर्चा करें। NPA के अनुसार श्रम की कमी के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र को वृद्ध कर्मियों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगभग आधे कर्मचारी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि किन सुरक्षा सेवाओं में अधिक विदेशी श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जो विदेशी श्रमिकों को संबंधित अनुभव और कौशल विकसित करने में मदद करे। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
3: दो देशिता का?
2: सुबारशी कात्ता देसु।
3: それは良かったですね。
2: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
3: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबी नी पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
3: दो देशता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
2: सुबारशी कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
3: सोरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
2: शशी वो तकसन तोरीमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
2: मीते कुदासाई।
1: देखिए,
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
2: आ, कोरे, यूकी-सान।
1: अरे, ये तो यूकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
3: यूकी-सान?
1: यूकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक यूकी की थी जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: पियानो नो एनसो ओ किकी नी किमाशिता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
3: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
3: एनसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
3: पियानो नो एनसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ, उसके बाद आया है
3: किकिनी
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए, और
3: इकिमाशिता
1: है क्रिया
3: इक
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
3: किकिनी इकिमाशिता
0: यानी सुनने गई थी में
3: किकिनी
0: बना है क्रिया
3: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
3: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
3: पियानो नो एनसो किकिनी
1: और उसके बाद जोड़ा
3: इकिमाशिता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
3: किकी नी इकिमाशिता, पियानो नो एनसो ओ किकी नी इकिमाशिता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाशिता का?
1: आज कहाँ गई थी?
0: इसमें
3: क्यों
0: का अर्थ है आज और
3: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहाँ।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
3: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
3: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
3: काईनी
0: बना है क्रिया
3: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
3: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
3: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
3: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
3: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
3: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
3: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
3: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
5: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।寿司を食べに行きました。
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
3: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
3: कायोबी।
1: बुधवार है
3: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
3: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
3: कियोबी।
1: शनिवार है
3: दोयोबी।
1: और रविवार है
3: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
3: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
2: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता। दो देशिता का? सुबारशिकात्ता देसु। सोरे वा योकात्ता देसु ने। शशिन ओ ताकुसान तोरिमाश्ता। मीते कुदासाई। अ, कोरे युकी-सान। युकी-सान?
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ।

0: विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
2: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
3: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद बुहेरा अहमर के एक बरामदी मरकज पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता जुमेरात को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद बंदरगाह यांबू तक खाम तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। इस पाइपलाइन को अपना हुर्मुज के मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रॉयटर्स ने मंगल के रोज जहाजरानी की सनद के जराए का हवाला देते हुए खबर दी कि सऊदी अरब ने यांबू पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी है। पड़ोसी मुल्क यमन में हौसी बागी सऊदी हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने अपना कंट्रोल बुहेरा अहमर में बहरी जहाजरानी की अहम बंदरगाह आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के इलाकों तक फैला दिया है। हौसियों ने बुध के रोज एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया और यांबू में तेल की एक तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों से नुकसान पहुंचाया है। नेशनल पुलिस एजेंसी के माहरीन के एक पैनल ने जापान के सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए मखसूस महारतों और दीगर अहलियतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों को शामिल करने के इम्कान पर बहस शुरू कर दी है। ये शोबा कारकुनों की शदीद किल्लत का शिकार है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कानून फिलहाल मुस्तकिल रिहाइश के हामिल गैर मुल्की रिहायशियों, जापानी शहरियों के शुरकाए हयात और दीगर कुछ अफराद को इस सनत में काम करने की इजाजत देता है। माहरीन का यह पैनल, जिसमें एक सिक्योरिटी सर्विस एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक वकील शामिल हैं, बुध के रोज टोक्यो में अपने इफ्तिताही इजलास के लिए जमा हुआ। खास तौर पर इस बात पर बहस की कि आया गैर मुल्की शहरियों को मखसूस हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम और महारत के फरोग के लिए रोजगार प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी के शोबे में काम करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। नेशनल पुलिस एजेंसी के कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो के सरबराह यामादा योशिताका ने कहा कि चूंकि सिक्योरिटी की सनत गैर मुल्की कारकुनों से पूरी तरह फायदा उठाने से कासिर है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैनल के अरकान मुख्तलिफ जावियों से ऐसे लोगों को कबूल करने पर सरगर्म बहस करें। नेशनल पुलिस एजेंसी ने इशारा किया है कि मजदूरों की किल्लत के साथ साथ सिक्योरिटी की सनत को अफरादी कुव्वत की उम्र रसीदगी का भी सामना है, जहां इसके तकरीबन निसफ कारकुनों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। पैनल इस बात पर बहस करेगा कि गैर मुल्की कारकुनों को किन सिक्योरिटी खिदमात में काम करने की इजाजत दी जाएगी और वो एक ऐसा निजाम वजह करेगा जो गैर मुल्की कारकुनों को मुतल्लिका तजर्बा और महारत हासिल करने में मदद फराहम करे। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने अपनी काबीना में रद्दोबदल करते हुए बास मरकजी वुजरा को ओहदों पर बरकरार रखा है। चीफ काबीना सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने जुमेरात की सपहर नई काबीना के ओहदेदारों का ऐलान किया। और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान और अमरीका पर मंतकी और तहमुल मिजाज रहने पर जोर देते हुए दोनों फरीकों से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: टॉम और यूकी दोबारा मिल पाते हैं या नहीं, ये जानिए अगले सबक में।
1: Tokyo からお送りします。
2: This is NHK World, Radio Japan, Tokyo.

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 17 सितंबर बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। जापान की प्रधानमंत्री ताकायची सानाए ने अपने कुछ प्रमुख मंत्रियों को उनके पदों पर बरकरार रखते हुए मंत्रिमंडल में फेरबदल किया है। मुख्य कैबिनेट सचिव किहारा मिनोरू ने बृहस्पतिवार दोपहर को नए कैबिनेट सदस्यों के बारे में बताया। ताकायची मंत्रिमंडल के 18 सदस्यों में से किहारा सहित 8 अपने पदों पर बने रहेंगे। वित्त मंत्री खातायामा सात्सुकी, विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्स और रक्षा मंत्री कोइजुमी शिंजिरो भी अपने अपने पदों पर बने रहेंगे। ताकायची ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की गठबंधन सहयोगी पार्टी के एक सदस्य को भी अपने मंत्रिमंडल में जगह दी है। जापान इनोवेशन पार्टी के पूर्व महासचिव नाकात्सुका हिरोशी को नियामक सुधार व संबंधित नीतियों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने ईरान और अमेरिका से तर्कसंगत और संयमित रहने का आग्रह करते हुए एक दूसरे से बातचीत करने का आह्वान किया है। बुधवार को पेचिंग में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची के साथ बैठक में उन्होंने ये आग्रह किया। चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने चीन और ईरान के बीच संबंध विकसित करने की उत्सुकता व्यक्त करते हुए कहा कि चीन ईरान के वैध अधिकारों की रक्षा के लिए आपसी संवाद व सहयोग मजबूत करने को तैयार है। पश्चिम एशिया के हालातों के बारे में वांग ने कहा कि चीन नहीं चाहता कि क्षेत्रीय तनाव यमन और लाल सागर तक फैले। उन्होंने संबंधित पक्षों से बातचीत में शामिल होने का आह्वान किया। इसके जवाब में अराग़ची ने कहा कि ईरान लड़ाई जारी रखना नहीं चाहता, बल्कि अपने हितों की डटकर रक्षा करते हुए एक राजनयिक समाधान चाहता है। अराग़ची के अनुसार ईरान का मानना है कि अमरीका के साथ हुआ उसका समझौता ज्ञापन अब भी वैध है और अमरीका को उसमें की गई सभी प्रतिबद्धताएं पूरी करनी चाहिए। ये बैठक चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच इस माह के अंत में अमेरिका में होने वाली बैठक से पहले हुई है। माना जाता है कि इस बैठक से चीन पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपना प्रभाव दिखाना चाहता था। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने अपनी मूल ब्याज दर में 0.25% अंकों की वृद्धि करने का निर्णय लिया है। बैंक ने 3 साल से भी अधिक समय में पहली बार ऐसा किया है। नीति निर्धारकों ने आधिकारिक नीतिगत ब्याज दर को 3.75 से 4% के बीच रखने का निर्णय लिया। उन्होंने आखिरी बार जुलाई 2023 में ये दर बढ़ाई थी। फेडरल रिजर्व ने मंगलवार से शुरू हुई अपनी 2 दिवसीय नीति बैठक के समापन पर इस फैसले की घोषणा की। मतदान करने वाले सभी 12 सदस्य इसके पक्ष में थे। नीति निर्धारकों ने माना कि ईरान के हालातों के कारण तेल कीमतें बढ़ी हैं और मुद्रास्फीति उच्च है। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि ब्याज दर बढ़ाने से मुद्रास्फीति को 2% के लक्षित स्तर तक तेजी से वापस लाने में मदद मिलेगी। फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष केविन वॉश ने कहा, हमें इस बात का पूरा भरोसा होना चाहिए कि मुद्रास्फीति हमारे लक्ष्य की ओर स्पष्ट और पर्याप्त गति से बढ़ रही है। आज

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। रॉयटर्स समाचार एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद लाल सागर स्थित एक निर्यात केंद्र पर तेल की लोडिंग रोक दी गई है। सऊदी अरब ने पिछले बृहस्पतिवार को ड्रोन हमले में क्षतिग्रस्त हुई पाइपलाइन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस पाइपलाइन का उपयोग होर्मुज जलडमरू मध्य को बाईपास कर यांबू बंदरगाह तक कच्चा तेल भेजने के लिए किया जाता था। रॉयटर्स ने मंगलवार को जहाजरानी उद्योग के सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब ने यांबू में तेल की लोडिंग रोक दी है। पड़ोसी देश यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोही सऊदी समर्थित अंतरिम सरकार के खिलाफ अपना हमला तेज कर रहे हैं। हूती लड़ाकों ने लाल सागर में एक महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बाब अल मंडेब जलडमरू मध्य के आसपास के क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण बढ़ा लिया है। हूतियों ने बुधवार को एक वक्तव्य में दावा किया कि उन्होंने सऊदी अरब के एक F-15 लड़ाकू विमान को मार गिराया और यांबू में एक तेल सुविधा को बैलिस्टिक मिसाइलों और अन्य हथियारों से क्षतिग्रस्त कर दिया। राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी NPA की एक विशेषज्ञ समिति ने जापान के सुरक्षा क्षेत्र में काम करने के लिए निर्दिष्ट कौशल और अन्य योग्यताओं वाले विदेशी श्रमिकों को शामिल करने की संभावना पर चर्चा शुरू कर दी है। गौरतलब है कि ये क्षेत्र श्रम की गंभीर कमी का सामना कर रहा है। वर्तमान सुरक्षा सेवा कानून के तहत स्थायी निवास दर्जे वाले विदेशी, जापानी नागरिकों के जीवन साथी और कुछ अन्य लोग इस क्षेत्र में काम कर सकते हैं। सुरक्षा सेवा संघ के एक वरिष्ठ अधिकारी, विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और एक वकील सहित विशेषज्ञों की इस समिति ने बुधवार को टोक्यो में अपनी पहली बैठक की। विशेष रूप से उन्होंने इस बात पर चर्चा की कि विदेशी नागरिकों को निर्दिष्ट कुशल श्रमिक कार्यक्रम एवं कौशल विकास रोजगार कार्यक्रम के तहत सुरक्षा क्षेत्र में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। NPA के सामुदायिक सुरक्षा ब्यूरो के प्रमुख यामादा योशी ताका ने कहा कि सुरक्षा उद्योग विदेशी श्रमिकों का पूर्ण उपयोग करने में असमर्थ है, इसलिए वो चाहते हैं कि समिति सदस्य विभिन्न दृष्टिकोणों से ऐसे लोगों को स्वीकार करने पर चर्चा करें। NPA के अनुसार श्रम की कमी के साथ साथ सुरक्षा क्षेत्र को वृद्ध कर्मियों की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसमें लगभग आधे कर्मचारी 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं। समिति इस बात पर चर्चा करेगी कि किन सुरक्षा सेवाओं में अधिक विदेशी श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए और एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेगी जो विदेशी श्रमिकों को संबंधित अनुभव और कौशल विकसित करने में मदद करे। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 29वें पाठ में आप कहीं जाने का मकसद बताना सीखेंगे।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम, चीनी फोटोग्राफर मिया और हारूसान हाउस की मकान मालकिन हारू जी बातें कर रहे हैं। मिया रविवार को कामाकुरा के एक मंदिर में पियानो प्रस्तुति देखने गई थी। वो बाकी दोनों को वहाँ की तस्वीरें दिखा रही है।
0: तो आइए सुनते हैं 29वें पाठ की बातचीत।
2: どうでしたか？
3: 素晴らしかったです。
2: それは良かったですね。
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。あ、これ、ゆうきさん。
2: ゆうきさん？
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: पहले मिया ने पियानो प्रस्तुति के बारे में बताया।
2: निचियोबिनी पियानो नो एंसो किकी नी किमाश्ता।
1: रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
0: ये सुनकर हारूजी ने पूछा,
2: दो देश्ता का?
1: कैसी थी?
0: मिया ने उत्तर दिया,
3: सुबारश कात्ता देसु।
1: बहुत अच्छी थी।
0: तब हारूजी ने कहा,
2: सरे वा योकात्ता देसु ने।
1: ये तो अच्छी बात है।
0: उसके बाद मिया उन्हें पियानो वादक की तस्वीरें दिखाने लगी।
3: शशियो तकसन तोरिमाश्ता।
1: बहुत सारी तस्वीरें खींची।
3: मीते कुदासाई।
1: देखिए।
0: तस्वीर देखकर ताम हैरान हो गई।
3: आ, कोरे, युकी सान।
1: अरे, ये तो युकी जी हैं।
0: हारूजी के सेंसर ने ताम की आवाज से भांप लिया कि कुछ बात है, तो उनके गाल टिमटिमाने लगे। उन्होंने पूछा,
2: युकी सान?
1: युकी जी?
0: वो तस्वीर पियानो वादक युकी की थी, जिससे ताम जापान में मिलना चाहती है। लगता है कि अब जल्द ही दोनों की मुलाकात होने वाली है।
1: आज का मुख्य वाक्य है
3: पियानो नो एंसो किकी नी किमाश्ता,
1: यानी पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी। ये वाक्य सीखकर आप कहीं जाने का उद्देश्य बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
2: पियानो
0: का अर्थ है वाद्य यंत्र पियानो और
2: एंसो
0: का अर्थ है प्रस्तुति। इसलिए
2: पियानो नो एंसो
0: का मतलब हुआ पियानो प्रस्तुति।
1: उसके बाद लगा है कर्म कारक ओ। उसके बाद आया है
2: किकिनी,
1: जिसका अर्थ है सुनने के लिए। और
2: इकिमाश्ता
1: है क्रिया
2: इक,
1: यानी जाना का विनम्र भूतकाल रूप।
0: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि
2: किकिनी इकिमाश्ता
0: यानी सुनने गई थी में
2: किकिनी
0: बना है क्रिया
2: किक
0: यानी सुनना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: किकिमास।
1: उसमें से मास हटाया तो बना
2: किकी,
1: और मकसद बताने के लिए उसमें जोड़ दिया कारक नी।
0: तो कहीं जाने का उद्देश्य बताने के लिए क्रिया के मास रूप में से मास हटाइए और नी जोड़ दीजिए।
1: आज के वाक्य में उद्देश्य था पियानो प्रस्तुति सुनना, इसलिए मिया ने कहा
2: पियानो नो एंसो किकिनी,
1: और उसके बाद जोड़ा
2: इकिमाश्ता।
0: तो अब आप भी साथ साथ बोलकर उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए।
2: किकिनी इकिमाश्ता, पियानो नो एंसो किकिनी इकिमाश्ता।
1: और अब सुनते हैं एक छोटी सी बातचीत, जिसमें एक महिला कहीं जाने का मकसद बता रही है।
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
5: हराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने पूछा,
4: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का?
1: आज कहां गई थी?
0: इसमें
2: क्यों
0: का अर्थ है आज और
2: दोको
0: एक प्रश्नवाचक शब्द है जिसका मतलब है कहां।
1: जवाब में दूसरी महिला ने कहा,
5: 原宿に服を買いに行きました。
1: कपड़े खरीदने हाराजुकु गई थी।
0: हाराजुकु में कपड़ों की बहुत सारी दुकानें हैं जहां युवा नए फैशन के कपड़े खरीदने जाते हैं।
2: फुकु
0: का अर्थ है कपड़े।
2: काईनी
0: बना है क्रिया
2: काउ
0: यानी खरीदना से।
1: इस क्रिया का मास रूप है
2: काईमास।
1: उसमें से मास हटाकर बना
2: काई
1: और उसमें जुड़ गया नी। इससे पता चलता है कि वो महिला हाराजुकु में किस उद्देश्य से गई थी।
0: तो अब ये बातचीत फिर से सुनिए और उत्तर दोहरा कर अभ्यास कर लीजिए।
2: क्यों दोको नी इकिमाश्ता का? हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता। हाराजुकु नी फुकु ओ काई नी इकिमाश्ता।
1: अब वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए आप सुशी खाने गए थे। सुशी को जापानी भाषा में भी कहेंगे
2: सुशी।
1: खाना के लिए जापानी भाषा में क्रिया है
2: थाबेरु
1: और उसका मास रूप है
2: थाबेमास।
1: उसमें से मास हटाएंगे तो बनेगा
2: थाबे।
1: तो कोशिश कीजिए।
6: सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता। सुशी ओ थाबे नी इकिमाश्ता।
0: और अब याद कर लीजिए कुछ संबंधित शब्द। आज हम आपको सिखा रहे हैं सप्ताह के दिनों के नाम। आप भी साथ साथ बोलने का अभ्यास कर लीजिए।
1: सोमवार है
2: केत्सुयोबी।
1: मंगलवार है
2: कायोबी।
1: बुधवार है
2: सुयोबी।
1: बृहस्पतिवार है
2: मुकुयोबी।
1: शुक्रवार है
2: कियोबी।
1: शनिवार है
2: दोयोबी।
1: और रविवार है
2: निचियोबी।
0: आज की बातचीत में मिया ने कहा था
2: निचियोबी नी पियानो नो एंसो ओ किकी नी इकिमाश्ता।
0: यानी वो रविवार को पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर से सुन लेते हैं।
3: 日曜日にピアノの演奏を聞きに行きました。
4: どうでしたか？
3: 素晴らしかったです。
4: それは良かったですね。
3: 写真をたくさん撮りました。見てください。
7: あ、これ、ゆうきさん。
4: ゆうきさん？
0: और अब हम लेकर आए हैं अंश घूमे मिया के साथ, जिसमें आज हम बात करेंगे कामाकुरा की, जहां मिया पियानो प्रस्तुति सुनने गई थी।
1: कामाकुरा टोक्यो से रेलगाड़ी से लगभग एक घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहां पहुंचकर लगता है जैसे हम किसी अलग दुनिया में आ गए हैं। लगभग 800 वर्ष पहले वहाँ जापान का पहला सामुराई शासन शुरू हुआ था।
0: वहाँ का त्सुरुगाओ का हाचिमांगू श्राइन मिनामोतो सामुराई परिवार से संबंधित शिंतो मंदिर है। शहर के दूसरे सिरे पर भगवान बुद्ध की 11 मीटर ऊंची विशालकाय प्रतिमा भी है।
1: लेकिन कामाकुरा सिर्फ ऐतिहासिक स्थलों के लिए ही नहीं, सुंदर प्राकृतिक दृश्यों के लिए भी जाना जाता है। वहाँ आप पहाड़ियों की चढ़ाई कर सकते हैं और मौसम के अनुसार चेरी या फिर हाइड्रेंजिया के फूलों या शरद के रंग बिरंगे पत्तों का भी आनंद ले सकते हैं।
0: इनके अलावा आप प्यारे और दिलचस्प कैफे और दुकानों में भी जा सकते हैं।
1: कामाकुरा में एक तरफ समुद्र भी है, लोग वहाँ सर्फिंग करने जाते हैं। थोड़ा आगे जाने पर एनोशिमा द्वीप पड़ता है, जिस पर आधारित पारंपरिक लकड़ी की छपाई वाला चित्र भी मौजूद है।
0: प्यारी सी एनोदेन रेलगाड़ी में सवार होकर आप एनोशिमा जाते हुए समुद्र की खूबसूरती का भी आनंद ले सकते हैं।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: देखते हैं अगले पाठ में ताम की यूकी से मुलाकात हो पाती है या नहीं। तब तक के लिए सायोनारा।
8: Radio Japan, Tokyo.

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। रॉयटर्स न्यूज एजेंसी का कहना है कि सऊदी अरब में एक पाइपलाइन पर हमले के बाद बुहेरा अहमर के एक बरामदी मरकज पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी गई है। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता जुमेरात को ड्रोन हमलों से नुकसान पहुंचने के बाद बंदरगाह यांबू तक खाम तेल ले जाने वाली पाइपलाइन को आर्जी तौर पर बंद कर दिया था। इस पाइपलाइन को अपना हुरमुज के मुतबादल रास्ते के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। रॉयटर्स ने मंगल के रोज जहाजरानी की सनद के जराए का हवाला देते हुए खबर दी कि सऊदी अरब ने यांबू पर तेल की भराई मुअत्तल कर दी है। पड़ोसी मुल्क यमन में हौसी बागी सऊदी हिमायत याफ्ता अबूरी हुकूमत के खिलाफ अपनी जारहियत बढ़ा रहे हैं। ईरानी हिमायत याफ्ता जंगजुओं ने अपना कंट्रोल बुहेरा अहमर में बहरी जहाजरानी की अहम बंदरगाह आबनाए बाबुल मंदब के आसपास के इलाकों तक फैला दिया है। हौसियों ने बुध के रोज एक बयान में दावा किया है कि उन्होंने एक सऊदी F-15 जंगी तैयारा मार गिराया और यांबू में तेल की एक तनसीब को बैलिस्टिक मिसाइलों और दीगर हथियारों से नुकसान पहुंचाया है। नेशनल पुलिस एजेंसी के माहरीन के एक पैनल ने जापान के सिक्योरिटी के शोबे में काम करने के लिए मखसूस महारतों और दीगर अहलियतों के हामिल गैर मुल्की कारकुनों को शामिल करने के इम्कान पर बहस शुरू कर दी है। ये शोबा कारकुनों की शदीद किल्लत का शिकार है। सिक्योरिटी सर्विसेज का कानून फिलहाल मुस्तकिल रिहाइश के हामिल गैर मुल्की रिहायशियों, जापानी शहरियों के शुरकाए हयात और दीगर कुछ अफराद को इस सनत में काम करने की इजाजत देता है। माहरीन का यह पैनल, जिसमें एक सिक्योरिटी सर्विस एसोसिएशन के एक सीनियर ओहदेदार, एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और एक वकील शामिल हैं, बुध के रोज टोक्यो में अपने इफ्तिताही इजलास के लिए जमा हुआ। खास तौर पर इस बात पर बहस की कि आया गैर मुल्की शहरियों को मखसूस हुनरमंद कारकुन प्रोग्राम और महारत के फरोग के लिए रोजगार प्रोग्राम के तहत सिक्योरिटी के शोबे में काम करने की इजाजत होनी चाहिए या नहीं। नेशनल पुलिस एजेंसी के कम्युनिटी सेफ्टी ब्यूरो के सरबराह यामादा योशिताका ने कहा कि चूंकि सिक्योरिटी की सनत गैर मुल्की कारकुनों से पूरी तरह फायदा उठाने से कासिर है, इसलिए वो चाहते हैं कि पैनल के अरकान मुख्तलिफ जावियों से ऐसे लोगों को कबूल करने पर सरगर्म बहस करें। नेशनल पुलिस एजेंसी ने इशारा किया है कि मजदूरों की किल्लत के साथ साथ सिक्योरिटी की सनत को अफरादी कुव्वत की उम्र रसीदगी का भी सामना है, जहां इसके तकरीबन निसफ कारकुनों की उम्र 60 साल या इससे ज्यादा है। पैनल इस बात पर बहस करेगा कि गैर मुल्की कारकुनों को किन सिक्योरिटी खिदमात में काम करने की इजाजत दी जाएगी और वो एक ऐसा निजाम वजा करेगा जो गैर मुल्की कारकुनों को मुतल्लिका तजर्बा और महारत हासिल करने में मदद फराहम करे। और अब आखिर में आज की अहम खबरों पर एक नजर। जापान की वजीर आजम ताकायची सनाए ने अपनी काबीना में रद्दोबदल करते हुए बास मरकजी वुजरा को ओहदों पर बरकरार रखा है। चीफ काबीना सेक्रेटरी किहारा मिनोरू ने जुमेरात की सपहर नई काबीना के ओहदेदारों का ऐलान किया। और चीन के वजीर खारजा वांग यी ने ईरान और अमरीका पर मंतकी और तहमुल मिजाज रहने पर जोर देते हुए दोनों फरीकों से बातचीत का अमल शुरू करने की अपील की है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों, तबसरों और तजियों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।

0: टॉम और यूकी दोबारा मिल पाते हैं या नहीं, ये जानिए अगले सबक में।
1: NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
2: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.